बोलते मैं देव पूले पूले पैर टकाउंदे मिड़का रखदे संगदे झिझकदे सही में डरदे